0: श्रीदेव
1: इसे स्वामिनी ओब सबबिन्म सुशुद्ध सिल सुशुद्धता वे उल्पत बोहन से में यही नोहन से गे आत्मनंगे अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवात करण में नप्याय दिब अपे से अदुने मे पांडु अपुदेसा अब स्वामीन वन जेसुस क्रिस्तुन महान से गे श्री शरीर श्री रुधिर बावट पत्वनु संदहाय उन महान से दुख सहित मरनेट सिय कमेत्तिन पू कमेत्तिन पवरादिय मिट पेर पूपे रागेन वहां से तुति पुदा एक खड़ा मिसे कीमिन सिय श्राव के इंट दुन सेक ओब सम में गेन अनुभव करन सब विन्म में उबुदेसा पवरादेनु लबन मागे शरीर आई रात्रि भोजने वाले दू पशु उन्नान से कुशलान दरगिन नावत तुति पुदा में से केमिन से श्राव के इंट दून से ओब सम मेन गिन पाने करान सब विन में अभिनव वूद अनंत वूद गिविस में मागे रुदिर कुशलान आई पाव कमाव संधाव गोदेश साद सियल मनुष्य अनुदेश सादे वगरुन लबन्ने मास्ते किरीम पिनिस में सिदु करान है।